पावन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात बधाई दाया खेले सगले जगत चंगियां बुरियां वाचे धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

एक न जपन करतबा जी अंदर जियो सब जाला सब तेरे बस तेरा कर पला तेरे कर आनंद बधाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जर

कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी, हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी, रख संगत।

सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद, कहें हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहेओ। सब तोहे बखान्यो, दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै, गहयो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज आस, गोविंद दास तुहार। सगल

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दो ता गावहु हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यो मनहो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान की टिट हो जिस दिया एह वडे आईया कहे नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कहे नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनद।

अब पाया उतरे सगल विसूर, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया बिनवंत, नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूर, सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पईयो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो, जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उदारो, एहे वास्त तजी नह जाई, नित नित रख उर तारो, तम संसार चरण लग तरिया, सब नानक ब्रह्म पसारो, सलोक महला पंजवा।

सब तारियु जगरियान कियो, तिनके दुख कोटिक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। एह पद्धत ते मत चूक हरे मान, भेद विभेद न जान बियो। प्रत्यक्ष हृदय गुरे अर्जुन कै, हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। चरण सरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन ताहे बारंबार गुर हेत है। पावनी भगत पाए कौडी अगर भाग राख, ताहे गुर सर्व निदान दान देत है। सतगुर दया निद महिमा अगाध बोध, नमो नमो नमो नमो। नेत नेत नेत है, सूरा सो पहचानिया, जो लड़ै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै, कबहू ना छाड़ै खेत। अंदर सच्चा ने हो, लाया प्रीतम अपना। तन मन होए निहाल, जा गुर देखा सामने। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूरे अरसहु कुरसहु चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, माल जनम जनम दी कटिया। सजन सच्चा पातशाह, सिर साहा दा जिस पास बैठिया, सोहिया सबना दा वेसा। सजन सच्चा पातशाह, सिर साहा दा जिस पास बैठिया, सोहिया सबना दा वेसा। सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सलोक राज कपटं रूप कपटं, तान कपटं कोल गर्भत है। संचंत बिखिया छलं छिद्रं, नानक बिन हर संग न चालते। राज कपटं रूप कपटं, तान कपटं कोल गर्भत है। संचंत बिखिया छलं छिद्रं, नानक बिन हार संग।

परमेश्वर चंदन चांदन सरद रुत मूल न मिटई काम शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जान सुन प्रताप गोविंद निरपौ पये मन तोट न आवे मूल संचया नाम तन संत जनास्यों संग पाई वड्डे पुन आठ पहर हर त्याए हर जस नित सोन संत जनास्यों संग पाईए वड्डे पुन आठ पहर हर त्याए हर जस

0: दर्शन प्यासी दिन सिरा चित्वो अंधिनीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत।
1: चाला गे उठ नाम जाप निस्बा सुरे आराद कारा तुझे ना ब्यापई नानक मिटे उपाद। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली।
0: हम अवगुण भरे एक गुण ना अमृत छाड़ बिखे बिखा माया मोह परम पे भूले सुत दारा स्यो प्रीत लगा। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाय। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाय। एक ओंकार सतगुर प्रसाद असा महला चौथा शंत कर चौथा तन तन श्री गुरु राम।

0: कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सुना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़ ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ बेपूर नानक बखाने बेहनती तुदबाज कूड़ों कूड़ महला पहला
1: सच ता पर जानिए जारी दे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोए सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार नाउ सुन मंदैसिए ता पाए मोख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो धरत काया साध के विच दे करता बियो सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किछ पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बैरह करे निवास सच सबना होए दारू पाप कड्डे तोए

0: गुरुमुख देख गरु सुख पायो, कुती जो प्यास पीयूष पिवन की, बंचत सिद्ध को बेद मिलायो। पूरन पो मन ठार बसो, रस बासन सोजो धन दस्तायो। गोबिंदवाल गोबिंदपुरी सम, जल्यन तीर भी पास बनायो। गयो दुख दूर बरखन को, सो गुरुमुख देख गरु सुख पायो। समरथ गुरु सिर हाथ तरयो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अगन हरयो, निसबासर एक समान ध्यान। सो नाम सुने सुत भान डरयो, भन दास सो आस जगतर गुरु की। पारस पेट परस करयो, रामदास गुरु हर सत कियो। समरथ गुरु सिर हाथ तरयो।
1: अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। हरनाक्ष फारे कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। सीनत बस्तर दीन बहु साज, सो दामा अपदा ते राखिया। गनका पड़त पूरे ते काज, श्री सतगुर सो प्रसन्न कलज गोए। राखो दास पाठ की लाज, झोलना गुरु गुर गुरु गुर। गुरु जप प्राणी हो, शब्द हर हर जपे। नाम नव निध अपे, रसन अनस रस। सत कर जानियो, फुन प्रेम रंग पाइय। गुरमुख त्याइय, अन मार्ग तजो। भजो हर ज्ञानियो, बचन गुर रद धरो। पंच भू बस करो, जन्म कुल उद्धरो। द्वार हर मानियो, जो तो सब सुख। ए तो उत तुम बंछवो, गुरु गुर गुरु गुर। गुरु जप प्राणियों।

एहन सहज सोभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसमदी नूर अर सह कुरसो चटिया तुद डठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पातशाह सिर शाहद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो सज्जन सचा पातशाहो सिर शाहद शाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो।

साहिब जी राम काली महला पहला सूरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजै लोक सुने पत चोली मंगण कहताई पीखिया नाम पड़े सूरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोक सुने पत चोली मंगण कहताई पीखिया नाम पड़े बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठाली करते बार ना लागे बंद रखे चांद

करें कागद लूण रह कृत संग पानी कमल रह ऐसे भगत मिल है जन नानक तिन जम क्या करै।

0: चरण न जाई तोती टिका जप माली धन मिले शाखाई अंतर पूजा पढ़े कते बस संजम तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जहे तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवास श्री भगवान तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ना पियावे साग कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहा शर्म तरम का डेरा दूर नानक कूड़ रहे भरपूर मथे टिका तेड़ धोती तो कखाई हाथ श्री जगत का साई नील वस्त्र पहर होवे प्रवान अमले स्थान ले पूजे पुराण अपाख्या का कोठा बकरा खाना चौके ऊपर किसी ना जाना देखे चौका कड्डी का ऊपर आई बैठी कुड़िया मत पिटा वे मत पिटा अन साडा फिटा तन फिटा भेड़ करेन मन जूठे चुली ब्रेन कहु नानक सच त्याई है सुच हो वै

पौड़ी चिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएदा आपे दे वड्याई आपे कर्म कराएदा वड्डो वड्डा वड्डमेदनी सिरे सिर धंधे लाएदा नदर पठी देख रे।

0: नानक फिके बोले तन मन फिका हो फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका दरगे सटिए मोटुका फिके पाहे फिका मूर्खा किए पाणाल है सजाए महला पहला
1: अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अड़सठ तीर जे नावे उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदरते पले संसार तिन्ने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप्पी कर जा प्रवाह ना ही किसे केरी बात सच्ची ना दरबाट ऊपर खर्च मंगा जब देता खा दीवान एको कल में कह महात्मा मेल दाले लेखा पीड़ छुटे नानक का ज्यों तेल पौड़िया पी करा।